0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: बाबा जी किथे बख्शौनी पौगी जी, पर गुरु रामदास जी दी नगरी चक रामदास असि अज ही रवाना होने।

गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार सत श्री अकाल गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के साथ आप अभी आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम का। दोस्तों इस कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है और इस कार्यक्रम से लेते हैं आपसे विदाई और थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइश।

दोस्तों बताना चाहूंगा लो फरमाइस कार्यक्रम आप लोगों के मनोरंजन के लिए आपकी आवाज के साथ साथ आपके मन पसंद गानों को भी प्रसारण करते हैं हम। आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल करके हमारे स्टूडियो में आप अपनी फरमाइशों को दर्ज अवश्य करवा दें। दोस्तों हेलो फरमाइश कार्यक्रम के प्रेजेंट यानी प्रस्तुतकर्ता डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कीजिए थोड़ा सा इंतजार लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का

0: 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीणा के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6 3 7 8 0 2 4 7 5। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है।

0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल।
1: रूपचंद जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं सर जी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: जी सुना, पिक्चर का नाम है अमृत और गीत के बोल है जीवन साथी साथ में रहना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, हमारे प्रतिदिन प्रसारण होने वाले खास आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश, जिसे आप सुनते हैं आपकी आवाज के साथ आपका मन पसंद गाना। दोस्तों, हमें कॉल करने का समय आप अवश्य ध्यान में रखें। सुबह की प्रथम पारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें कॉल करने का समय आप अवश्य ध्यान रखें। सुबह की प्रथम पारी की हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9:30 से 10:30 तक। और संध्या के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 3:00 से लेकर और 4:00 तक। आपकी फरमाइश आप हमारे स्टूडियो में दर्ज करा सकते हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर आप अवश्य लिख लें 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। नंबर एक बार पुनः सुने और अवश्य लिखें 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। आप हमें इस नंबर पर आपके पास व्हाट्सएप खोलिए और व्हाट्सएप के अंदर आपकी आवाज रिकॉर्ड करके आप अपनी आवाज में नाम, जगह और गाने का बोल बोल कर भी हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में आपकी आवाज को जरूर शामिल करेंगे। धन्यवाद। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी।
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, गाना सुना सर।
0: जी नाम बताएं सर आपका।
1: भगवान सिंह बगदावत।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं भगवान सिंह जी?
1: एमपी से, आगर मालवा।
0: अच्छा बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर वो हमको तुमसे प्यार है उस फिल्म पर गाना सुनना, हमको तेरे इश्क में पागल हो गया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग आपने इतनी दूर से कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी खबर पक्को है। वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: कविता।
1: कविता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: नंगापुर सिटी से।
1: बताएं कविता जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
0: चना का खेत।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश कैसा है?
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक, फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
1: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
2: जब कोई मक्खी आपके ताजे खाने पर बैठती है तो आप उसे बस हाथ से उड़ा देते हैं और खाना खा लेते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर पचलता है कि मक्खी ने आपके खाने के साथ क्या भयानक चीज कर दी है। सबसे पहली घिनौनी बात, मक्खियों के पास जीभ नहीं होती, ये पैरों के बालों से खाने का स्वाद चखती हैं। ये वही पैर हैं जो गंदगी पर बैठे थे। चूंकि मक्खियों के दांत नहीं होते इसलिए वो ठोस खाना नहीं चबा सकती। खाने के लिए इनके मुंह से एक अजीब सी नली बाहर आती है जिसके आखिर में एक गीला स्पंज लगा होता है। अब आता है सबसे घिनौना हिस्सा, खाने को निगलने के लिए मक्खी अपने पेट का खतरनाक एसिड और अपना थूक आपके ताजे खाने के ऊपर उल्टी कर देती है। ये एसिड इतना पावरफुल होता है कि ये कुछ ही सेकंड्स में ठोस खाने को पिघला देता है और उसे गलाकर एक लिक्विड सूप में बदल देता है। जब कोई मक्खी आपके ताजे,
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे,
4: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
5: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
4: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
6: हेलो,
7: हाँ जी नमस्ते।
6: जी नमस्ते, नाम बताएं।
7: लवली
6: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
7: गंगापुर सिटी।
6: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
7: उड़ी उड़ी।
6: बिल्कुल सुना रहे हैं लवली जी आपकी फरमाइश का ये उड़ी उड़ी सॉन्ग।

0: बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: आरवी पूजा।
0: आरवी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: महबूब मेरे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश है।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: सौरभ मीना।
1: सौरभ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगा पीछी पी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: गाड़ी गेट से लगाए।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करता हूँ।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2020।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर।
4: अंकित।
3: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: यहाँ पर सिटी।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: गुड मॉर्निंग एफएम से.
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका.
0: माय नेम पायल अग्रवाल है. अभी गाना मेरे फ्रेंड के लगाना बिंदिया चमकी ही पूरी.
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे का.

0: दोस्तों 10:54 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के साथ खिली हुई सुहानी धूप।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: विक्रम।
0: विक्रम जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगा पुष्टी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज की रात का मजा उसने का आंखों से लीजिए।
0: सुना रहे हैं सर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं?
1: राकेश मीना।
0: राजेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सिटी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मौसम शर्मा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश कहेगा।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताएं।
1: सेनाज।
0: सेनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी संजय कॉलोनी।
0: बताएं सेनाज जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जब हाल है दिल।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डेज़ में। कुल के धन्यवाद।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ
3: हेलो
4: जी, नाम बताएं।
3: कोमल।
4: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर से थी।
4: बताएं कोमल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: खाली तेरी छोटी है परांदा तेरा लाल।
4: सुना रहे मैम आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो डीएस में।

0: बताएं सर।
1: मैं बोल रहा हूँ ये गंगापुर सिटी।
0: क्या नाम है आपका?
1: राजेश कुमार।
0: राजेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: गाना सुनना चाहता एक तारा बोले तुम।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश से। रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: गर्मियों में गर्मी ज्यादा, सर्दियों में सर्दी ज्यादा, कहा जाता है इसका कारण एटम बम के टेस्ट हैं। अभी चीन ने एटम बम बनाकर दूसरा टेस्ट किया। सूचना यह भी मिली है कि फ्रांस ने भी एटम बम बना लिया है। भारत का अटल फैसला है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे संसार के नष्ट होने का भय हो। एटमी दौर में रूस और अमरीका सबसे आगे हैं।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
4: प्रियांशु सैनी।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी।
3: बताएं सर, कौन सा गाना

0: नमस्ते सर
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं।
0: विक्रम मीना।
1: विक्रम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ये धोखे प्यार के जो मैंने दिल पे सहे रो रो के।
1: बिल्कुल सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हूँ।
1: हाँ सर जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: गंगाधर सावंतर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते रेडियो के सर?
1: गाना ऐसा देखो, भूली बिसरी प्रेम कहानी।
0: क्या बात है सर, बहुत ही
1: नगीना सुना है। नगीना
0: सुना है सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो के सुन। कौन किया? बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: डीएस रेडियो गंगापुर राजस्थान जी।
0: यस सर, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर, मीना सर जी, प्यार ते सत्कार भी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक सर जी, तुम्हारे साथ बात करके तो और अच्छे हो जाते हैं जी हम लोग।
0: बात है सर, सब आपका लाड प्यार है। पहले तो हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को आपका नाम बताएं।
1: हाँ जी सर जी, जय श्री जय सर। मैं जी पिंड माउट खुर्द जिला बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोल रहा सर जी।
0: अच्छा मट्टू जी, बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से आप?
1: सर जी एक प्लीज, ये बात है जी, मुझे पंजाबी सॉन्ग सुना दो जी आज।
0: बिल्कुल बताएं।
1: क्या बात है सर जी, मेरे सर जी मानजोग बड़े भाई ना अपने मलकीत सिंह घड़ी साहब गोनियाला मंडी तो उन्होंने फरमाइश है जी, कुलदीप मानक का गीत है जी, सिंगर का नाम है कुलदीप मानक जी।
0: जी
1: बोल गुण गा कर बताऊं जी, गा कर बताऊं जी माड़ा जा।
0: बिल्कुल गा के बताएं सर।

0: पूनी डोली चाटगी डग बन जा रही है, एक ही था सर जी।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का, बेहतरीन सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।
0: ठीक है सर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जांगड़े जी बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। बताएं योगेश जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
1: बरसो रे मेघा मेघा बरसो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, ये बेहतरीन सा सॉन्ग आपकी फरमाइश पर। रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप रेडियो डीएस पे।
0: सावन का महीना आया है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में खुल के। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर जी आपका बहुत।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: विष्णु सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
0: नशिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: कॉलेज वाली छोरी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।

0: जय इस छोरे गल्ला सेटिंग हो जा
1: जी सा जा छोरा तो घना एंडी है
2: न्यू बता सेटिंग कितनी क्लियर है
3: सेटिंग का तो बेरा ना पर यार इतने हैं तेरा ककता वालिया ने भी ब्याह ले जाएंगे
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
5: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
6: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
5: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
6: 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक
7: हेलो
8: हेलो
7: जी नाम बताएं
8: लक्ष्य सैनी
7: लक्ष्य जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप
8: 80 लाख
7: हाँ जी
8: 80 लाख
7: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: को सुना रहे हो सर आपकी सुनवाई। गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर।
3: सोहेल सैफी नाम है।
2: सोहेल सैफी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: जंगापुर राजपुर।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: यहाँ सुनना चाहते हैं दिल लगी है दी आवाज, थोड़ा सा धुआं होता और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यारा बदल गई।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी सुनवाई।

0: हेलो
1: एक मिनट रुको। हेलो
0: हाँ जी, नाम बताएं।
1: मेरा नाम झलक है सर।
0: बताएं कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुनना है जी हाले मस्ती, न्यू वर्जन है सर।
0: बिल्कुल सुनो।
2: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
3: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
0: नाम बाबू खान है सर।
1: बाबू खान जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: अगर हमारी शादी में हम तुम्हारे हैं तुम्हारे तनु।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं।
1: नाम कपीस मीणा, ग्राम सुरवाल, सवाई माधोपुर।
0: अच्छा, सुरवाल सवाई माधोपुर से। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर आप?
1: एमसी बाबा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे।
1: हेलो

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: निकिता।
0: निकिता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रेलवे स्टेशन।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तुझ से भी चढ़ कर जिंदा है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी सरवाइव पे सॉन्ग। हेलो।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: धीरूभाई ठाकुर।
0: धीरूभाई जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: परदेसी परदेसी जाना नहीं।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से बेहतरीन से सुन रहे, जिसमें खुल के वो धन्यवाद।

0: क्या नाम है आपका? लक्ष्य जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: कर्मचारी कॉलोनी रामापुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: दिल पे चलाई चूड़िया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना। रेडियो डीएस में कुल क्या बदबू। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: तन्वय गुप्ता।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: दो सवाड़े।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश है।

0: सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं।
1: लक्ष्य सोलंकी।
0: सोलंकी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रीको से।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: चन्ने मल्ले पुराने दिल की।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग। रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुन
3: हेलो जी, नाम बताएं।
4: कल्लू।
3: कल्लू कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी से।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: दलविंदर का।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर।
0: रिहान खान।
1: रिहान जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी सिंधिया कॉलोनी।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ऊंची ऊंची दीवारों पे यारिया टूका।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप।

0: जी नाम बताएं।
1: ममता।
0: ममता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सारा जग सो गया।
0: बिल्कुल सुना रहे ममता जी, सारा जग सो गया आपकी फरमाइश के।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM।

गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे नए तरह ने कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस

0: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: कल्पना कीजिए एक ऐसे ठंडे खून वाले शातिर शिकारी की, जो चिलचिलाती और तपती गर्मी में जमीन की गहरी और अंधेरी गहराइयों में बिना हिले डुले हफ्तों तक भूखा प्यासा मौत की नींद सोता रहता है। लेकिन जैसे ही आसमान में काले बादल घिरते हैं और मानसून की पहली बौछार सूखी मिट्टी को छूती है, इस जीव के अंदर छिपी मौत अचानक जाग उठती है। बरसात की डरावनी रातों में जब आप अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब ये जहरीले जीव जंगलों को छोड़कर चुपचाप आपके सोफे के नीचे, आपके जूतों में और यहां तक कि आपके टॉयलेट फ्लश के पाइप से रेंगते हुए आपके बिस्तर के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। आखिर बादलों की गड़गड़ाहट सुनते ही इन सांपों के दिमाग में ऐसा कौन सा खौफनाक ट्रिगर ऑन हो जाता है जो इन्हें इंसानों की बस्तियों पर एक खूनी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए मजबूर कर देता है। इस रहस्य की पहली परत खुलती है इनके आशियाने से। सांप कभी खुद के बिल नहीं बनाते, वे चूहों के छोड़े गए अंधेरे बंकरों या जमीन के अंदर की खोखली दरारों में शरण लेते हैं। लेकिन जैसे ही मानसून की मूसलाधार बारिश होती है, पानी सबसे पहले इनके इन गुप्त ठिकानों में बेरहमी से भरने लगता है। दम घुटने और डूबने के डर से इनके पास बाहर भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन कहानी यहां और डरावनी हो जाती है। सांप कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं, यानी वे अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा नहीं कर सकते। बाहर लगातार गिरता ठंडा पानी उनके पूरे नर्वस सिस्टम को जाम करने लगता है। इसी कड़कड़ाती ठंड से बचने और सूखी गर्मी ड्राई वार्म्थ की तलाश में ये सीधे आपके कंक्रीट के सूखे और गर्म घरों की तरफ रुख करते हैं। मगर खेल सिर्फ अपनी जान बचाने का नहीं है, बल्कि एक बेरहम शिकार का भी है। मानसून आते ही इंसानी बस्तियों और गटर के आसपास मेंढकों और चूहों की एक भारी फौज तैरने लगती है। सांपों के पास सूंघने के लिए एक ऐसा सुपर एडवांस मिलिट्री ग्रेड सेंसर होता है, जिसे विज्ञान में जैकबसंस ऑर्गन कहा जाता है। जब सांप अपनी दो मुही जीभ हवा में लहराते हैं, तो वे मानसून की भारी उमस ह्यूमिडिटी में छिपे इन जीवों के गंध कणों को पल भर में कलेक्ट कर लेते हैं। बारीक से बारीक नमी में ये सेंसर इतना खतरनाक हो जाता है कि कोसों दूर छिपे शिकार की लोकेशन इन्हें साफ दिखने लगती है। इसी शिकार की गंध का पीछा करते करते ये गटर और फ्लश पाइप के रास्ते सीधे आपके टॉयलेट पॉट तक रेंगते हुए आ जाते हैं। कुदरत का ये अनोखा विज्ञान साबित करता है कि मानसून में सांपों का बाहर आना कोई अंधविश्वास या इच्छाधारी बदला नहीं है, बल्कि मौत के मुंह से निकलकर अपने वजूद को बचाए रखने का एक बेजोल इवोल्यूशनरी संघर्ष है। अगली बार जब बारिश की रात में आप अपने कमरे की बत्ती बुझाएं, तो फर्श पर पैर रखने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि कुदरत का ये अदृश्य शिकारी शायद आपके ही घर के किसी अंधेरे कोने में घात लगाए बैठा हो।
3: तो फिलहाल गंगापुर सूरी का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के साथ समय 1:12 का फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने। तो नए तराने कार्यक्रम में मैं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: रात में मेरे नीचे मत आना, भूत पकड़ लेगा।
1: अरे भाई कोई भूत नहीं होता, पीपल रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अरे भाई ये तुम्हारे लिए जानलेवा है, बस इसीलिए पूर्वजों ने तुम्हें डराकर दूर रखा। अरे भाई शाम को किसी को उधार मत दे, वापस नहीं मिलेगा। हाँ सुन, रात को अंधेरा रहता था तो पैसे गिनने में दिक्कत होती थी, इसलिए ये बात बनाई गई। दरवाजे पर नींबू मिर्ची लगाने से बुरी नजर से बच जाओगे। नहीं भाई, पहले नींबू मिर्ची गेट पे लगाने से कुछ कीड़े घर के अंदर नहीं आते थे, इसलिए इसे लगाया जाता था। ओए शाम को झाड़ू क्यों लगा रही है, पाप चढ़ेगा।
2: अरे नहीं भाई, पहले घर में बिजली नहीं होती थी तो जरूरत का सामान भी साफ हो जाता था।
1: अंधविश्वास नहीं, असली साइंस को समझो और जरूरी जानकारी के लिए चुपचाप लर्न साइंस AI को फॉलो कर लो और कमेंट कर दो।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
5: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
6: क्या तुमने कभी सोचा है कि वो छोटी सी चिड़िया जो तुम्हारे घर की खिड़की पर बैठती थी, आज वो कहाँ चली गई? ये है गौरैया, हमारे बचपन की सबसे प्यारी और करीबी चिड़िया। एक समय था जब सुबह उठते ही गौरैया की चहचहाहट सुनाई देती थी, लेकिन आज ये आवाज धीरे धीरे खामोश होती जा रही है। गौरैया सदियों से इंसानों के साथ रहती आई है, ये इंसानी बस्तियों के आसपास घोंसला बनाती है और इंसानों के साथ मिलकर जीती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसकी संख्या 60% से भी ज्यादा कम हो गई है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हम इंसान। बढ़ते हुए मोबाइल टावर, कंक्रीट के जंगल, कीटनाशक दवाइयां और पेड़ों की कटाई, इन सब ने गौरैया का घर छीन लिया है। गौरैया सिर्फ एक चिड़िया नहीं है, ये हमारे पर्यावरण की सेहत का सबसे बड़ा संकेत है। जब गौरैया खुश होती है तो इसका मतलब है हमारा पर्यावरण ठीक है, और जब गौरैया गायब होती है तो समझो प्रकृति खतरे में है। गौरैया के बारे में एक हैरान करने वाला तथ्य ये है कि ये एक दिन में 800 से 1000 बार अपने बच्चों को खाना खिलाती है। इसकी ममता और मेहनत किसी भी इंसान को शर्मिंदा कर दे। भारत में 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग इस छोटी सी चिड़िया को बचाने के बारे में सोचें। अगर तुम भी गौरैया को वापस लाना चाहते हो तो अपने खिड़की पर एक छोटा सा दाना और पानी का कटोरा रख दो, बस इतना काफी है। तो क्या तुम्हारे घर में अभी भी गौरैया आती है? कमेंट में बताओ और ऐसी अद्भुत जानकारी के लिए अभी फॉलो करो।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: कभी सोचा है माँ के पेट में बच्चा पूरी तरह पानी में डूबा होता है, फिर भी वो जिंदा कैसे रह पाता है? क्योंकि अगर कोई इंसान पानी में डूब जाए तो कुछ ही सेकंड्स में उसका दम घुटने लगेगा, तो फिर एक अजन्मा बच्चा पूरे 9 महीने तक माँ के पेट में पानी के अंदर रहकर भी जिंदा कैसे रहता है? सच्चाई आपकी सोच से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल माँ के गर्भ में बच्चा जिस लिक्विड के अंदर रहता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड बच्चे को चोट से बचाता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और उसके शरीर को सेफली ग्रो होने देता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि माँ के पेट में बच्चा असल में सांस लेता ही नहीं। जी हाँ, उसके लंग्स उस समय लगभग इनएक्टिव होते हैं, मतलब वो अपने फेफड़ों से हवा अंदर खींचकर जिंदा नहीं रहता। तो फिर ऑक्सीजन आती कहाँ से है? असल में बच्चे की पूरी जिंदगी एक अद्भुत बायोलॉजिकल सिस्टम पर टिकी होती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बच्चे को सीधे उसकी माँ के शरीर से जोड़कर रखता है। जब माँ सांस लेती है तो ऑक्सीजन उसके ब्लड में मिल जाती है और फिर वही ऑक्सीजन एम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल के जरिए सीधे बच्चे तक पहुँचती रहती है। मतलब बच्चा खुद सांस नहीं ले रहा होता बल्कि उसकी माँ उसके लिए सांस ले रही होती है। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग बात, क्योंकि बच्चे के लंग्स काम नहीं कर रहे होते इसलिए उसके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं होता। उसके दिल के अंदर कुछ स्पेशल टेम्परेरी पाथवेज होते हैं जो ब्लड को लंग्स की तरफ जाने से रोकते हैं। मतलब उसका शरीर पहले से जानता है कि अभी लंग्स की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट ये है कि जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उसका शरीर अचानक बदलना शुरू कर देता है और जैसे ही वो पहली बार बाहर

दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक या एडवांस मेडिकल लैब मिलकर भी एक ऐसी चीज नहीं बना सकती जो माँ के दूध का मुकाबला कर सके। आम तौर पर लोग इसे सिर्फ बच्चे का पोषण यानी खाना समझते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन साइंस की दुनिया का सच आपके होश उड़ा देगा। माँ का दूध कोई साधारण लिक्विड नहीं है, बल्कि यह एक स्मार्ट और कस्टमाइज्ड बायोफ्लूइड है जो हर सेकंड बच्चे की जरूरत के हिसाब से अपना पूरा केमिकल फॉर्मूला बदल लेता है। आखिर माँ के शरीर के अंदर ऐसा कौन सा सेंसर लगा है जो बच्चे की बीमारी को भांप कर उसके लिए तुरंत एक नई दवा तैयार कर देता है। इस रहस्य का सबसे बड़ा और जादुई ट्विस्ट छिपा है एक वैज्ञानिक मैकेनिज्म में, जिसे बैकवॉश इफेक्ट कहते हैं। जब बच्चा दूध पीता है तो उसके मुंह और माँ के निप्पल के बीच एक वैक्यूम यानी दबाव बनता है। इस दौरान बच्चे की थोड़ी सी लार वापस माँ के निप्पल के रास्ते उनके

0: शरीर के अंदर चली जाती है। माँ का इम्यून सिस्टम इस लार का तुरंत एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करता है। अगर बच्चे के शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया है तो माँ का शरीर उस लार से उसे पहचान लेता है और महज कुछ ही घंटों के भीतर दूध में उस खास बीमारी से लड़ने वाले एंटीबॉडीज बनाकर भेजने लगता है। यानी बच्चा बीमार बाद में होता है, माँ का दूध उसकी दवा पहले बन जाता है। इसके अलावा डिलीवरी के तुरंत बाद निकलने वाले पहले गाढ़े पीले दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये सिर्फ दूध नहीं है बल्कि बच्चे के लिए कुदरत की तरफ से दी गई पहली वैक्सीन है, जो उसके कच्चे और कमजोर इम्यून सिस्टम को लोहे जैसा मजबूत बना देती है। इसमें मौजूद करोड़ों इम्यून सेल्स बच्चे की आंतों पर एक अभेद्य सुरक्षा कवच चढ़ा देते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माँ के दूध में एक अजीबोगरीब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे HMOG ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। चौंकाने वाला सच ये है कि बच्चे का शरीर इस HMO को पचा ही नहीं सकता, तो फिर कुदरत ने इसे दूध में क्यों डाला? विज्ञान ने खोजा कि यह बच्चे के लिए है ही नहीं। ये बच्चे के पेट में मौजूद उन अरबों अच्छे बैक्टीरिया की खुराक है जो आगे चलकर बच्चे की दिमागी और शारीरिक क्षमता को तय करते हैं। कुदरत की यह अद्भुत और बेजोड़ इंजीनियरिंग साबित करती है कि माँ का दूध सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का सबसे एडवांस और लाइव मेडिसिन सिस्टम है। दुनिया का कोई भी
1: DSFM पे
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल मार्च से जून के महीने में आसमान से इतनी भयंकर आग आखिर बरसती कहाँ से है, और जो सूरज साल के बाकी महीनों में बड़ा शांत रहता है वो इन दिनों इतना गुस्सा क्यों हो जाता है? जी हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस कड़कती गर्मी का कारण ये नहीं है कि पृथ्वी सूरज के बहुत पास चली जाती है। असल में जब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है तब पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है। लेकिन फिर ये जादू होता कैसे है? आइए आज विज्ञान सरल पर हम इस तपती गर्मी के पीछे के गहरे अंतरिक्ष विज्ञान को समझते हैं। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में एकदम सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि वह थोड़ी तिरछी यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। साल के इन महीनों में पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, जहां हमारा भारत देश है, घूमते घूमते सूरज की तरफ झुक जाता है। अब जो सूरज की किरणें बाकी दिनों में तिरछी आ रही थीं, वो इस झुकाव की वजह से सीधे हमारे सिर पर पड़ने लगती हैं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे टॉर्च की रोशनी को किसी दीवार पर सीधा मारो तो एक ही जगह पर बहुत तेज गर्मी पैदा होती है। लेकिन भाई, सिर्फ पृथ्वी का ये झुकाव तो आधी कहानी है, असली विलन तो अभी बाकी है। इस सूरज की सीधी धूप की वजह से राजस्थान का थार रेगिस्तान एक धधकती हुई भट्टी बन जाता है। वहां की रेत इतनी गर्म हो जाती है कि वहां की हवा आग के गोले में बदल जाती है। यही गर्म हवा बुलेट ट्रेन की रफ्तार से उत्तर और मध्य भारत की तरफ बढ़ती है, जिसे हम लू कहते हैं। दूसरा विलन है तिब्बत का पठार, जो इस कड़कती गर्मी में दुनिया का सबसे बड़ा हीटर बन जाता है। समुद्र तल से बहुत ऊंचा होने के कारण यह सूरज की गर्मी को सीधे सोख कर उबलने लगता है। और तीसरा सबसे बड़ा विलन कोई और नहीं बल्कि हम इंसान खुद हैं। आज हमारे शहरों में पेड़ कट चुके हैं और हर तरफ डामर की सड़कें और कंक्रीट की इमारतें हैं। ये कंक्रीट के जंगल दिन भर सूरज की गर्मी को स्पंज की तरह सोखते हैं और रात में बाहर छोड़ते हैं। इसी वजह से हमारे शहरों में अब रातें भी भट्टी जैसी गर्म होने लगी हैं। कुदरत का भूगोल और इंसानों की ये गलतियां मिलकर भारत को एक उबलता हुआ कटोरा बना देती हैं। तो इस तपती गर्मी में अपने शरीर को बचाने के लिए दिन में कम से कम 4 लीटर पानी जरूर पीजिए। कुदरत की इस बेमिसाल इंजीनियरिंग के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में सूरज लिखें।
0: और हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर के धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे रेडियो DS।

0: subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
4: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
5: DS साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
6: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
7: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
8: DS साइंस एकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस। DS साइंस एकेडमी।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर. गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6.
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे.
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन.

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: क्यों सिमरन तू आ गई, मैंने तो लग गया तू आना ही नहीं। नाउ चड्डे फट्टे एंड बर्न द डांस फ्लोर।
1: डोंट वरी, आज डांस भी होगा और चांस भी।

0: 6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: साथ है।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।

दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली बिसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर

वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे वैक टू वैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दोस्तों इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का कर में आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों 3:58 का समय हो चुका है, थोड़ी देर यानी 4 बजे लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद कार्यक्रम राजस्थानी गीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार,
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, कक्षा 10th।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6
1: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों 4:29 का समय हो चुका है। फिलहाल आंध्र साइटून का 99.6 रेडियोस गंगापुर सिटी का तड़का भर में आपका रेडियो दोस्त रेसी मिला। दोस्तों तो अभी आपने सुना राजस्थानी कार्यक्रम, थोड़ी देर में लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: मारगान।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मीनापुर से।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो बीएस पे?
0: सकी ने मन में मार दिया, उसी ने तुझे प्यार दिया।
1: तो सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश कैसा?

0: निगाहां कातल ने दिलां नूं ठगदे आ, साडा दिन विच नाम बोले रातां नूं जगदे आ, कोई किथे मार करू भेती रग रगदे आ, ओ तेरी जिथे सोच मुके आ असी सोचण लगदे आ।
1: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हेलो
1: ऋषि जी, सादर नमस्कार।
0: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मान्य, और आप कैसे हैं?
0: सर हम बहुत अच्छे हैं, आपका लाड प्यार और दुआएं साथ है। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: ऋषि जी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ डीएस रेडियो पर
0: जी,
1: फिल्म का नाम है नौकर पल्लो लटके।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में, कुल के धन्यवाद।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग

राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त रिसेनिना। दोस्तों, हमारे प्रतिदिन प्रसारण होने वाले खास आपका पसंदीदा कार्यक्रम लू फरमाइश से आप

दोस्तों अभी आपने सुना लू फरमाइश कार्यक्रम। फिलहाल आप इस वक्त मेरे साथ टून का 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है आपके मन पसंद कार्यक्रम भजन संध्या का। तो सुनते हैं ये प्यारा सा एक भजन।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: इतनी बड़ी स्टील कंपनी का मालिक,

0: ODS. सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे.
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
1: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: बोलतीस।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
6: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही है, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।

प्रिय श्रोताओं, कबीर दास जी के इस दोहे का अर्थ है, यदि समस्त धरती को कागज के रूप में इस्तेमाल किया जाए और

माध्यम से कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि हमें हमेशा मधुर और विनम्र बोलना चाहिए, जिससे न सिर्फ हमारे मन को शांति मिले बल्कि हमारी वाणी सुनकर, हमारी आवाज सुनकर

माध्यम से कबीर दास जी हमें समझा रहे हैं कि केवल बड़ा या शक्तिशाली होने का कोई लाभ नहीं यदि आप दूसरों के काम ना आए। जिस प्रकार खजूर का पेड़ ऊंचा होने के बावजूद भी किसी राहगीर को छाया नहीं दे सकता, और तो और उसका फल भी बहुत ऊंचाई पर होता है जिससे कोई भी उसके फल को खा नहीं सकता। इसलिए जीवन में बड़ा होने का महत्व तभी है जब किसी और का जीवन आपकी वजह से

इस दोहे का अर्थ है कि जो निंदा करने वाले हैं, अर्थात जो आपके बारे में सच बोलने वाले हैं, यानी जो आपको आईना दिखाने वाले लोग हैं, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी बुराइयों को बता दिया करते हैं और

कहने का अर्थ है कि जब मैं दुनिया में दूसरों में बुराइयां ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी इंसान वास्तव में बुरा नहीं मिला, किंतु जब मैं अपने हृदय में झांका तो पाया कि सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता तो मुझ में है, अर्थात मानव को किसी दूसरे में बुराई खोजने से पहले

0: के बुलबुले के समान है। इस प्रकार भोर होने पर सभी तारे छुप जाते हैं। उसी प्रकार एक दिन हम सभी काल के मुख में समा जाएंगे।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
3: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: दोस्तों इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम दी संध्या। दोस्तों अभी सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? पहले क्यों नहीं बताया? ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और मैंने नोटिस किया कि भैया सर्दियों में ना कई बार क्या होता है कि जरूरत ही नहीं पड़ती है किस चीज की, नेल कटर की। पता नहीं मेरे नाखून बढ़ते ही नहीं सर्दियों में। फिर जब मैंने गूगल किया तो मैंने पाया कि हमारे जो नाखून होते हैं वो गर्मियों के टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी लंबे हो जाते हैं। और इसके पीछे रीज़न है कि जो ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड का फ्लो हमारे फिंगर टिप्स पे, वो हीट की वजह से यानी मौसम की वजह से गर्मियों में ज़्यादा रहता है। अब इस फैक्ट का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपके बॉस और कुछ ऐसे रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में उंगली करना कभी नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल आप अमेजिंग गाने सुनो 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: दिए रहे
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

अच्छा, तभी मैं सोचूं कि ये गेम से पहले स्माइल भी क्यों नहीं करते। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और एक मार्शल आर्टिस्ट रिसर्च के मुताबिक लड़ाकू मार्शल आर्टिस्ट गेम से पहले अगर स्माइल भी कर दे तो भैया तो वो गेम उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। तभी मैं सोचूं कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इतना क्यों हंस रहा था। अब आप बोलोगे यार कि क्रिकेटर और मार्शल आर्टिस्ट में बहुत फर्क होता है। हाँ पता है, पर 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है और मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि वर्ल्ड कप फाइनल हम कैसे हार गए। तो यही रिसर्च को थोप देते हैं, पर फिलहाल आप पे कुछ गाने थोपूंगा नहीं, मैं प्यार से सुनाऊंगा 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: हर 6 महीने बाद बूटे बदलने वाला जब करना पऊ आपां नूं।
1: वो तो करना पऊगा जी, कुछ हुंदे सदा बहार, जिहड़े खड़ गए तो खड़ गए, कुछ मौसम तरह बदल जांदे आ।

राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।